0: इसी भवानीपुर में लोग ममता बनर्जी की सपोर्टर थी, आज इतना सारा लोग है, कैसा लग रहा है?
1: देखिए, भ्रष्टाचारी अहंकारी का पतन ऐसे ही होता है। उनका पार्टी भी खत्म, वो बंगाल पॉलिटिक्स में रिलेवेंट नहीं है, इरेलीवेंट।
0: बहुत सारे
1: भाई काम करना चाहिए, पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए, अभी सबको लेकर काम करना चाहिए। जनता ने सेकेंड फ्रीडम मिल गया, जनता को फ्रीडम मिला। इतना डर का माहौल, मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी ने डर भगाने का काम किया, इसलिए भय आउट भरोसा इन।
0: इतना प्यार जो मिल रहा है, इतना प्यार जो मिल रहा है,
1: आप लू तो विराट आशा भरोसा पूरण करते हैं।

0: इसी भवानीपुर में लोग ममता बनर्जी की सपोर्टर थी, आज इतना सारा लोग है, कैसा लग रहा है?
1: देखिए खत्म, वो बंगाल पॉलिटिक्स में रिलेवेंट नहीं है, इरेलीवेंट।
0: बहुत सारे
1: भाई काम, देखिए भ्रष्टाचारी अहंकारी का पतन ऐसे ही होता है।

0: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
1: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
0: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
1: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from them. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
0: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
1: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விடமாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
0: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accuse Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
1: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
0: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as chief minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
2: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor-turned-politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Tirosi Joseph Vijay Avargal.
4: From theaters to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathy era.
5: அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான
4: Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
1: See Joseph Vijay enum naan. Tamil Nadu arasin mudalamaichar endra murayil. எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும்
4: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
5: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen, when was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
4: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
4: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
6: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
4: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing-in is done. And now it's time for action as Thalapathy Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshata Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
2: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing-in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
1: எதிர்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: இட் இஸ் அ ப்ரோமான்ஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் தி சேஞ்ச்ட் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathy swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
8: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK ki peeth mein chura bhonk diya.
7: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
2: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
9: தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை, நேஷனல் ஆந்தம், மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
10: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
11: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
2: After being suspended from the Trinamool Congress, ex-TMC leader Riju Datta has hit out at the party's defeat in the assembly elections. Riju Datta has slammed the Mamata Banerjee government, saying her party disrespect for women led to its defeat to the BJP. He said TMC cadres have committed atrocities on Hindu women and the party cannot buy the respect of women by offering 1500 rupees. Riju Datta even claimed that no Trinamool leader will be able to ask for votes in 2029. While criticizing Mamata Banerjee, the suspended TMC leader praised Chief Minister Suvendu Adhikari, saying he saved the lives of at least 5,000 Trinamool Congress workers by not seeking revenge for his aide's murder and maintaining peace. The former Didi loyalist lauded Suvendu as the only person who has a right to sit in the chair of the West Bengal Chief Minister.
12: हम लोग सोचते थे पूरे बंगाल में जितनी महिलाएं हैं वो आंख बंद करके दीदी को वोट देंगे और दीदी को उनका वोट मिला ही है यही त्रिनोमूल के जो लोअर लेवल कैडर्स हैं ब्लॉक सभापति पंचायत प्रधान पंचायत समिति जिला परिषद इन लोगों ने महीने भर महीने साल भर साल गांव के हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है जो अत्याचार किया है 1500 से आप एक महिला का सम्मान नहीं खरीद सकते तो बीजेपी अगले दो तीन साल क्योंकि उनका 2029 का चुनाव है वो नई पार्टी है पहली बार उन्होंने सरकार में आए हैं वो इतना काम करेंगे बंगाल में इतना काम करेंगे बंगाल में कि तृणमूल का कोई नेता 2029 को घर घर जाके बोल नहीं सकेगा कि हमको वोट दो
13: I think that the truth always comes out, even though it is very late. And the same guy who defended the party for years together and on many occasions, ultimately learns the hard truth when his own mother, 72 years, a doctor, and holding a big position in the All India Medical Council, was actually insulted, abused, and threatened, and he did not get any shelter, good words, some assurance, nothing from the party which he had defended for years. This is the hard truth. Perhaps Riju Dattaji did not realize it when Kamdhuni took place, when Park Street took place, when Durgapur was there, when Argi Kaur was there and all women came out on the streets for Raat Dakhol. Women will protect the night because the government is unable or not willing to protect the respect of women. So that is the hard truth which he has learned, which all the women of Bengal has now realized, and they have voted for Bharatiya Janata Party. This is the truth. Mamata Banerjee and her team never respected any women. They only wanted the vote bank. Her own party leader, Mausam Noor, also left the party, if you remember. The hard truth is Datta has realized a little late. Actually. But
2: After taking oath in the new Bengal cabinet, senior BJP leader Dilip Ghosh has spoken exclusively to India Today alongside his wife Ringu Ghosh. He said things have changed in Bengal and promised that the BJP will get rid of the culture of fear in the state. Listen in.
14: अब पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे जो है यहाँ पर जब आप आए लोगों से मिल रहे हैं तो यहाँ पे लग रहे हैं, कैसा लगता है कि इको पार्क के अंदर यहाँ पे जहाँ कैमरा कभी अलाउड नहीं होता था यहाँ पर ये सब चीजें हो रही?
15: मैं यहाँ आता था इसलिए यहाँ कैमरा अलाउ बंद कर दिए। यहाँ एक गोल्फ कोर्ट है, गोल्फ खेलने के मैं जाता था, वो कोर्ट बंद कर दिए कि दिलीप घोष क्यों आता है। चाय की दुकान है सामने, चाय पी उसको बंद कर दिया। ऐसे बहुत जगह जहाँ जाते थे हम सब दुकान बंद कर दिए, जहाँ बैठते लोग सुबह गप मारते थे हम जाके मिलते उनको हटा दिए, भगा दिए, बहुत अत्याचार किया है। लोग उसका बदला ले रहे हैं जय श्री राम बोल के, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन उनके नेता पहले भाग चुके जो 15 साल तक लोगों को इतना अत्याचार किया, लूटा पीटा, वो पहले घर खाली कर दिए, अपने पत्नी को छोड़कर भाग गए। ऐसे बड़े बड़े नेता टीएमसी के हैं। नहीं, यहाँ जनता 50 साल से डर डर कर जी रही है। पहले उनका डर खत्म करना है। माननीय प्रधानमंत्री बोल के आए थे बाय आउट भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन। आज वही करना है। हम लोग डर डर के नहीं जिएंगे। उच्च चित्त जता भय चिन्ह उच्च जता सिर, ये हमारे होम मिनिस्टर ने बोले हैं। लोग सर ऊंचा करके हिम्मत से जिएंगे। लोगों को रामनवमी करने नहीं दिया जाता है, रास्ता में खड़ा होकर गाय की मांस खाते थे लोग। ये कल्चर भारत बंगाल का नहीं है, उसको बदलना है। वंदे मातरम, जनगण मन, बंगाल का, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत, अमर सोनार बांग्ला, श्रीलंका का राष्ट्रगीत, यही रचना हुआ है, हमारे कवियों ने लिखा है, ऋषि बंकिम ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। ये बंगाल को अपने जगह पर प्रतिष्ठित करना हमारा जिम्मेदारी है।
2: उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज कैरिड आउट अ मेजर कैबिनेट एक्सपेंशन इन व्हाट इज बीइंग सीन एज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन अहेड ऑफ द 2027 असेंबली इलेक्शंस। एज मेनी एज 6 मिनिस्टीरियल बर्थ्स were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
16: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
17: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है। पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे।
16: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
17: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं। एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
16: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
17: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है।
16: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
17: देखिए, हम लोग सभी का साथ सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
18: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
16: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर।
18: नहीं, वो गलत है, सब गलत है। वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले? यही बोलेंगे ना, कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है। जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
2: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
19: You are watching India Today.
20: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your master's in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: In his very first act as Chief Minister, Vijay signed key orders providing 200 units of free power and setting up a special task force to tackle the drug menace and ensure women's safety. However, with Tamil Nadu already reeling under heavy debt, these fresh promises are expected to put an additional burden on the exchequer. The real question is, will this Jananayagan-style administration be sustainable? Take a look at this news report.
1: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
2: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதா நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
1: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
2: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
1: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
2: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
1: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accused Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
2: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
1: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as Chief Minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
0: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor turned politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Hiroshi Joseph Vijay Avargal.
1: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathy era. Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
3: Sri Joseph Vijay enum naan. Tamil Nadu arasin mudhalamaichar endra murayil. எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும்
1: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
4: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen, when was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
1: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
3: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
1: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
5: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
1: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing-in is done, and now it's time for action as Thalapathy Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshata Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
0: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
3: தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
6: இட் இஸ் அ ப்ரோமான்ஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் தி சேஞ்ச்ட் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathy's swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
2: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
6: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
7: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK ki peeth mein chura bhonk diya.
6: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
0: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
8: Alunar dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhume alunargal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavude desi idathai national anthem migavum madikkirom. அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
9: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் நாட் த ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. தட் ஷோஸ் தட் விஜய் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி.
10: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was... sang at the very last end, and that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
11: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
12: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
11: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
12: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
11: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
12: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
11: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
12: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
13: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
11: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
13: नहीं, वो गलत है, गैर सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the hour. Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport, and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
7: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
14: You are watching India Today.
15: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
17: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: Report India Today.
1: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
2: தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
3: It is a bromance that defines the changed political reality in Tamil Nadu. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathy swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
2: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை பாராளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
3: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
4: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK की पीठ में छुरा भोंक दिया.
3: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
1: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adam Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
0: ஆளுநர் தான் இத்தகைய நிர்பந்தங்களை தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை நேஷனல் ஆந்தம் மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் பாவேந்தர் சொல்வது போல், எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
5: Here the practice in Tamil Nadu is to play Tamil anthem first and the end national anthem. That is the procedure. But this time the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
6: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
1: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
7: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
8: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
7: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
8: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
7: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
8: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
7: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
8: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
9: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
7: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
9: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले? यही बोलेंगे ना, कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
1: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
4: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया। एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
1: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
10: You are watching India Today. Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: You are watching India Today.
14: Joseph Vijay Hanuman

0: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
1: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதா நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
0: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
1: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியாக நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
0: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
1: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
0: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accuse Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
1: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
0: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as Chief Minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
2: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor turned politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Thirusi Joseph Vijay Avargal.
4: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathy era.
5: அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான
4: Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
1: Si Joseph Vijay enum naan Tamil Nadu arasin mudalamaichar endra murayil enadu gavanathirkullavadum theriya varuvadumana endha porulaiyum.
4: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
5: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen, when was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
4: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
4: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
6: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
4: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing in is done. And now it's time for action as Thalapathy Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshita Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
2: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing-in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
1: தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: இட் இஸ் எ ரொமான்ஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் தி சேஞ்ச்ட் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathy swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in six decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across four of five southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
8: Jaise hi satta ka khel kahin aur mud gaya, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
7: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
2: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly six decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play it third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adavarjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
9: தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை, நேஷனல் ஆந்தம், மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
10: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
11: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who wasn't responsible for the changing of sequence?
2: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
12: Tomar ji, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
13: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
12: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
13: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
12: गवर्नर साहिब अभी वहां मौजूद रहे हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
13: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
12: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
13: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
14: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
12: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर, की समीकरणों को लेकर.
14: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
2: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the hour. Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
8: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है. साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी. कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
2: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
15: You are watching India Today.
16: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
17: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: Are watching India Today.
1: Joseph Vijay Hanuman.

0: finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
1: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK ki peeth mein chura bhonk diya.
0: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
2: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play it third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
3: Alunar dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhume alunargal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavude desi idathai national anthem migavum madikkirom. அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகனமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல், எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
4: Here, the practice in Tamil Nadu is to play Tamil anthem first and the end national anthem. That is the procedure. But this time, the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
5: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kazhagam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
2: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
6: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
7: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है। पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे।
6: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
7: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं। एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
6: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
7: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है।
6: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
7: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
8: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
6: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर।
8: नहीं, वो गलत है, सब गलत है। वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है। जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
2: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
1: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना अब बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
2: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
9: You are watching India Today.
10: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: वाह दीदी वाह, सॉरी जा दीदी जा, बंगाल में भी कमल है खिला, वाह।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: Joseph Vijayanam Nan.

0: In his very first act as Chief Minister, Vijay signed key orders providing 200 units of free power and setting up a special task force to tackle the drug menace and ensure women's safety. However, with Tamil Nadu already reeling under heavy debt, these fresh promises are expected to put an additional burden on the exchequer. The real question is, will this Jananayagan-style administration be sustainable? Take a look at this news report.
1: Joseph Vijayanam Nan.
2: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
1: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதா நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
2: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
1: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
2: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
1: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
2: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accuse Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
1: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
2: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as Chief Minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
0: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor-turned-politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Thirosi Joseph Vijay Avargal.
4: See Joseph Vijay enum naan.
2: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathy era. Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu chief minister.
4: Si Joseph Vijay enum naan. Tamil Nadu arasin mudalamaichar endra murayil enadu gavanathirkullavadum theriyavaruvadumana endha porulaiyum.
2: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
5: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen, when was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
2: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
2: பட் சோஷியல் மீடியா ஹேட் அனதர் ஃபேவரட் ஃப்ரேம். Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
6: The Honourable Chief Minister of Tamil Nadu.
2: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing in is done. And now it's time for action as Thalapathy Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshita Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
0: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
1: எதிர்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: இட் இஸ் அ ப்ரோமான்ஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் தி சேஞ்ச்ட் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathi swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in six decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across four of five southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
8: Jaise hi satta ka khel kahin aur mud gaya, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
7: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
0: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly six decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adavarjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
9: தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை, நேஷனல் ஆந்தம், மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
10: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் நாட் த ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. தட் ஷோஸ் தட் விஜய் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி.
11: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was responsible for the changing of sequence?
0: Uttar Pradesh in political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwai in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
12: Tomar ji, kis tarike se dekh rahe hain jo elevation hua hai?
13: Dekhiye, hum log vidyarthi parishad ke samay se kaam karne wale karyakarta hain aur hamari party badi bariki se, hamara party netritva, rashtriya aur pradesh netritva सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
12: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
13: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
12: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
13: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
12: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
13: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
14: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
12: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
14: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
8: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
15: You are watching India Today.
16: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
18: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations like ESPN Radio.
19: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
18: Big 12 Radio.
20: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
18: and
20: down.
18: Talk sports.
21: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
18: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
17: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
22: It's your boy,
17: just
22: Jay-Z.
17: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
15: Watching India Today.
23: Joseph Vijay Anumnan.

0: strong party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
1: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
0: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
2: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly six decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adhav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
3: Alunar dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhume alunargal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavinte desi idathai national anthem migavum madikkirom. அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
4: Here, the practice in Tamil Nadu is to play Tamil anthem first and the end national anthem. That is the procedure. But this time, the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
5: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was responsible for the changing of sequence?
2: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
6: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
7: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है। पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे।
6: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
7: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं। एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
6: गवर्नर साहब अभी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
7: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है।
6: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
7: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
8: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
6: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर।
8: नहीं, वो गलत है, सब गलत है। वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है। जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
2: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the hour. Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
1: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना, आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3000 रुपया एक बोरी का कितना, एक बोरी का कितना, एक बोरी का कितना। और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
2: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
9: You are watching India Today.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: You are watching India Today.
12: Joseph Vijay Hanuman.

0: In his very first act as Chief Minister, Vijay signed key orders providing 200 units of free power and setting up a special task force to tackle the drug menace and ensure women's safety. However, with Tamil Nadu already reeling under heavy debt, these fresh promises are expected to put an additional burden on the exchequer. The real question is, will this Jananayagan-style administration be sustainable? Take a look at this news report.
1: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
2: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதா நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதில் 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
1: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
2: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியாக நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
1: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
2: இந்த விஷயத்தை தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
1: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accuse Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
2: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
1: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as Chief Minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
0: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor turned politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Tirusi Joseph Vijay Avargal.
1: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathy era. Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
3: Sri Joseph Vijayanum Nan Tamil Nadu Arasin Mudalamachar Endra Murayil. எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும்
1: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
4: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen, when was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
1: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
3: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
1: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate ghilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
5: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
1: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing in is done. And now it's time for action as Thalapathy Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshita Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
0: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing-in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
3: எதிர்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
6: It is a bromance that defines the changed political reality in Tamil Nadu. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathi swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
3: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
6: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in six decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across four of five southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
7: Jaise hi satta ka khel kahin aur mud gaya, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
6: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
0: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly six decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adavarjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
8: தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை, நேஷனல் ஆந்தம், மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
9: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் நாட் த ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. தட் ஷோஸ் தட் விஜய் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி.
10: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was... sang at the very last end, and that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who wasn't responsible for the changing of sequence.
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwai in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
11: Tomar ji, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
12: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
11: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
12: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
11: गवर्नर साहिब अभी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
12: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
11: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर.
12: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
13: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
11: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर, की समीकरणों को लेकर.
13: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना. कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport, and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
7: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया। एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
14: You are watching India Today.
15: Saturday nights will never be the same.
16: The biggest hits back to back in the mix.
17: Get ready for the biggest mix show on the planet.
18: The Tailgate Block Party.
19: The Tailgate Block Party.
17: 6 hours non-stop. Non-stop.
18: The best DJs from around the world.
19: The Tailgate Block Party.
17: Saturday night.
19: 8 p.m. Eastern.
18: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
17: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
1: Alunar dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhume alunargal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavinte desiya geethathai, national anthem, migavum madikkirom. அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
2: Here, the practice in Tamil Nadu is to play Tamil anthem first and the end national anthem. That is the procedure. But this time, the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
3: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamaraga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was responsible for the changing of sequence?
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
4: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
5: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
4: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
5: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
4: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
5: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
4: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर
5: देखिए, हम लोग सभी का साथ सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
6: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
4: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर।
6: नहीं, वो गलत है, सब गलत है। वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना। कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है। जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
7: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पिछले दो महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले दो महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
8: You are watching India Today.
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: So sorry.

0: वाह दीदी वाह, सॉरी जा दीदी जा, बंगाल में भी कमल है खिला, वाह।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: जोसफ विजय नमनान।

0: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
1: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
0: Vijay also issued a heartfelt shout out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
1: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
0: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
1: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருக்கு.
0: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accused Stalin's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
1: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
0: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as chief minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
2: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor turned politician Vijay took oath as chief minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing in into a full blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
3: Tirosi Joseph Vijay avargal.
4: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathy era.
5: அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான
4: Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor turned politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
1: See Joseph Vijay enum naan. Tamil Nadu Arasin Mudalamachar Yendra Murayil Yenada Governor Kulavadum Teriyavarvadumana Yenda Purulayum.
4: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger, and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
5: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen? When was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country, and that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
4: And then came the cinema level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
4: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
6: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
4: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing-in is done, and now it's time for action as Thalapathy Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshata Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
2: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing-in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
1: தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: இட் இஸ் அ ப்ரோமான்ஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் தி சேஞ்ச்ட் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு. Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathy swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
1: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
8: जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK ki peeth mein chura bhonk diya.
7: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
2: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play a third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adhav Arjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
9: Alunar dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhume alunargal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavude desi idathai national anthem migavum madikkirom. அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
10: Here, the practice in Tamil Nadu is to play Tamil anthem first and the end national anthem. That is the procedure. But this time, the governor wants Vande Mataram to be sung first and then Tamil anthem. That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
11: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
2: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
12: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
13: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
12: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
13: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
12: गवर्नर साहब भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
13: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
12: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
13: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
14: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
12: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
14: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
2: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the hour. Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
8: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है, वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है. साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी. कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
2: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
15: You are watching India Today. Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: वाह दीदी वाह, सॉरी जा दीदी जा, बंगाल में भी कमल है खिला, वाह।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: जोसफ विजय नमनान।

0: Bureau Report, India Today.
1: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play it third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adavarjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
2: தந்திருக்கிறார். எப்பொழுதுமே ஆளுநர்கள் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். நாம் இந்தியாவுடைய தேசிய கீதத்தை நேஷனல் ஆந்தம் மிகவும் மதிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகணமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் பாவேந்தர் சொல்வது போல், எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
3: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். That is wrong. That is not the practice in Tamil Nadu. That shows that Vijay is going towards BJP.
4: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
1: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what is being seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwai in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
5: Tomar ji, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
6: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
5: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सर वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
6: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं, एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
5: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
6: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है।
5: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
6: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
7: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है, तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
5: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर।
7: नहीं, वो गलत है, सब गलत है। वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है। जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है।
1: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
8: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना, आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
1: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
9: You are watching India Today.
10: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
9: Are watching India Today.
12: Joseph Vijay Anumnan.

0: In his very first act as Chief Minister, Vijay signed key orders providing 200 units of free power and setting up a special task force to tackle the drug menace and ensure women's safety. However, with Tamil Nadu already reeling under heavy debt, these fresh promises are expected to put an additional burden on the exchequer. The real question is, will this Jananayagan-style administration be sustainable? Take a look at this news report.
1: See Joseph Vijayanam Nan.
2: It is a new dawn in Tamil Nadu. The Vijay era has finally begun. Superstar delivered a power-packed first speech after taking oath as Chief Minister of the state. He announced the beginning of a new era of real secular and social justice. Vijay said he represents Hindus, Christians and Muslims while thanking the voters of Tamil Nadu.
3: பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதில் 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம்.
2: Vijay also issued a heartfelt shout-out to Gen Z supporters. Vijay promised transparent, corruption-free governance in his first speech, asserting his government would work solely for the welfare of the people.
3: ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு, I just want to take it forward from there. நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியாக நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி.
2: Vijay asserted that his administration will have zero tolerance against graft and would take strong action against corruption.
3: இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க.
2: Vijay even used the opportunity to take a dig at DMK and accuse Talent's party of leaving a debt of 10 lakh crore rupees on the exchequer.
3: இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
2: Stalin warned Vijay against blaming the previous government over the state's financial condition, asserting that Vijay only needs administrative skills. In his first decision as Chief Minister, Vijay signed his first set of official documents ordering 200 units of free power supply to every household, apart from a task force to tackle drugs and ensure women's safety. Tamil Nadu is already carrying a significant debt burden, and Vijay's additional promises can add more than rupees 1 lakh crore as cost to the exchequer. Superstar turned politician Vijay wants to run Tamil Nadu with a strong welfare model. But will this burn a significant hole in the state's coffers? Bureau Report, India Today.
0: Tamil Nadu's newest political spectacle has officially begun. Actor-turned-politician Vijay took oath as Chief Minister amid thunderous cheers at Chennai's Nehru Stadium, with supporters turning the swearing-in into a full-blown celebration. But the oath wasn't the only thing grabbing attention. Here's a look at all the moments that stole the spotlight.
4: Thiru C. Joseph Vijay Avargal.
2: From theatres to secretariat, from being a real hero to becoming a real chief minister, Tamil Nadu has entered the Thalapathi era. Nehru Stadium turned into a political blockbuster premiere as deafening chants echoed through Chennai, while actor-turned-politician Vijay officially took oath as Tamil Nadu Chief Minister.
4: Sri Joseph Vijay enum naan. Tamil Nadu arasin mudhalamaichar endra murayil. எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும்
2: Dressed not in the classic white veshti but in a sharp black power suit, Vijay ripped up the rule book of Tamil politics. No old school optics, just dapper presence. Just sleek styling, swagger and a statement. It is said to be the first time in Tamil Nadu history that a chief minister has taken oath in a court suit instead of the traditional shirt and veshti.
5: Dressed sharply, looking rather dapper in a suit. When have you seen, when was the last time you saw someone, a chief minister, taking oath in a suit? I don't think we've ever seen it in the country. And that gives you a sense of what we're witnessing right now. All around me, you can hear chants of TVK. Everyone's got their phones out, they're cheering. This is the moment they've been waiting for.
2: And then came the cinema-level twist. Back in 2009, Vijay reportedly wanted to join Rahul Gandhi's Congress. Fast forward to 2026, Rahul Gandhi sat in the front row as the smaller ally while Vijay took charge as the undisputed star of the show. The two leaders were seen chatting during the ceremony and even raised their joint hands together, a powerful visual underscoring their new political alliance.
3: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
2: But social media had another favorite frame. Trisha Krishnan, glowing in a turquoise Kanchivaram sari, cheering, smiling and hugging Vijay's family. Fans instantly declared it the ultimate Gilli reunion, only this time at a swearing-in ceremony.
6: The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu.
2: And in pure Vijay style, the climax had to be massy. Moments after taking oath, the new chief minister pulled out his phone and recorded a giant selfie video with Rahul Gandhi and other leaders on stage and thousands of supporters behind him in the stadium. The dialogues are over, the swearing-in is done. And now it's time for action as Thalapathi Vijay steps into his biggest role ever. Chief Minister of Tamil Nadu. With Akshita Nandagopal in Chennai, Bureau Report, India Today.
0: The bromance of Rahul Gandhi and Vijay was on full display at TVK Chief swearing-in. This rapport indicates the tectonic shift in Tamil Nadu's politics and why TVK and Congress have entered into a mutually beneficial alliance. Here's the report.
3: எதிர்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: It is a bromance that defines the changed political reality in Tamil Nadu.
0: Rahul
7: Rahul Gandhi and Vijay shared incredible chemistry at Thalapathi's swearing-in ceremony. That rapport was clearly visible. The TVK Supremo and Rahul held each other's hands on stage and projected warmth. Vijay even referred to Rahul as his brother in his first speech as Chief Minister.
3: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
7: Vijay had met Rahul Gandhi as far back as 2009 to discuss possibly joining the Congress party, though it did not happen then. That early connection, however, planted the seeds of a relationship that would quietly deepen over the years. Furthermore, by aligning with Vijay and his rising TVK platform, Congress finally joins a government in Tamil Nadu for the first time in 6 decades. Combined with its footprint elsewhere in the south, the party now straddles power across 4 of 5 southern states. For Vijay, the bargain is equally clear-eyed. TVK is a young party with enormous popular energy, but thin political infrastructure. The Congress gives it instant national credibility, a secular identity, and a runway to the 2029 Lok Sabha elections. But while aligning with TVK, Rahul Gandhi effectively dealt a death blow to the India bloc, snapping Congress's decades-long ties with the DMK. A fact highlighted by PM Narendra Modi, who accused Congress of being a backstabber and parasitic for abandoning its oldest ally, the DMK.
8: Jaise hi satta ka khel kahin aur mud gaya, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
7: But for Congress, dumping the DMK for Vijay is part of a larger strategy to maximize its gains for the 2029 elections from the state of Tamil Nadu, a state where its influence and vote share are in constant decline. And it hopes to do so, rising piggyback on Vijay's TVK. Will that strategy suffice to fight back the behemoth called BJP? Bureau Report, India Today.
0: A political first in Tamil Nadu, a non-DMK, non-AIDMK chief minister takes oath after nearly 6 decades. Actor-turned-politician Vijay sworn in as chief minister. But within hours, a controversy erupts. An anthem row now clouding the big moment with CM Vijay ally CPI alleging that the Tamil anthem was insulted. At the heart of the row, the order of songs at the swear-in. The CPI is asking why was the Tamil anthem not played first and instead the state song was played third after Vande Mataram. CPI doubling down on its charges, saying Tamil anthem was not given its due place, calling it a violation of long-standing protocol. CPI also termed the decision to play it third as unacceptable and insisted the Vijay government must restore tradition immediately of Tamil anthem to be played first in the position at all official events. Now, amid mounting criticism, TVK distanced itself from the oath ceremony. TVK Minister Adavarjuna said that the event was conducted under the governor and that the Tamil anthem will be placed first at all events.
9: Alnur dhaan ithagai nirbandhangalai thandirukkar. Eppozhudhum alnurgal ivvaru dhaan nadandhu kolgirargal. Naam Indiyavinte desiya geethai, national anthem, migavum madikkirom. அதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நேஷனல் ஆந்தம் நம்முடைய நாடு இந்தியா, அதனுடைய தேசிய கீதம் ஜனகனமன, அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல், தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய், பாவேந்தர் சொல்வது போல். எனவே தமிழுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும். வந்தே மாதரம் குறித்து வாதிக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றம்.
10: ஹியர் தி பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் டு பிளே தமிழ் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எண்ட் நேஷனல் ஆந்தம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். பட் திஸ் டைம் தி கவர்னர் வாண்ட்ஸ் வந்தே மாதரம் டு பி சங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தமிழ் ஆந்தம். தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் நாட் த ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. தட் ஷோஸ் தட் விஜய் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி.
11: A fresh controversy has erupted in Tamil Nadu just hours after the newly elected Chief Minister Joseph C. Vijay had been sworn in. In fact, during the swearing-in ceremony, the event of sequences went through such that at the concluding end, there was, Vande Mataram, there was the national anthem, and then the Tamil Thai Vaazhthu, which was... sang at the very last end. And that's what the CPI has questioned. CPI, remember, is one of the allies of TVK that has come out in support for the Tamilaga Vetri Kargam as they have gone ahead and formed the government. The question right now that CPI has placed before Vijay and TVK is that who was it responsible for the changing of sequence?
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has carried out a major cabinet expansion in what has been seen as a significant political recalibration ahead of the 2027 assembly elections. As many as 6 ministerial berths were filled with an eye on the upcoming UP assembly polls. BJP is working on a strategy to give more representation to Brahmin, Jat, Dalit, Parsi, Valmiki, Loth and other backward communities as part of its caste calculus. Now, among new names, Kailash Rajput from Tirwa in Kannauj and Surendra Dilher from Kher in Aligarh have been inducted as ministers. Dilher, a prominent Dalit leader from the Valmiki community, is expected to represent the party's outreach to Dalit voters, while Rajput's inclusion is aimed at strengthening support from the Loth community. The development comes as a politically crucial time for the ruling BJP, which is looking to consolidate its social coalition after the setbacks it faced in Uttar Pradesh during the 2024 Lok Sabha elections.
12: तोमर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
13: देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से, हमारा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है. पार्टी ने जो निर्देश दिया है, सरकार का जो निर्देश है, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे.
12: आज आप पहुंचे हैं, आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई, वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
13: देखिए, हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं. एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे.
12: गवर्नर साहिबा भी वहां मौजूद रही है, कुछ हिदायतें मिली हैं?
13: देखिए, लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है.
12: सपा सवाल उठा रही सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर?
13: देखिए, हम लोग सभी का साथ, सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है.
14: कितना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है. तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत.
12: अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपेंशन को लेकर, कि समीकरणों को लेकर.
14: नहीं, वो गलत है, सब गलत है. वो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बोले, यही बोलेंगे ना? कुछ बचा होता तो बोलते, कुछ बचा ही नहीं है. जो जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है. आज कोई उनको नारा लगाने के लिए नहीं है.
0: As the war escalates in West Asia and global markets remain on edge, Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens. Calling it the need of the hour, Prime Minister Modi has urged citizens to help conserve India's foreign exchange reserves amid fears of economic pressure from the conflict. The Prime Minister has appealed to people to use fuel efficiently and prefer public transport and avoid buying new foreign products. He has also urged citizens to avoid buying gold and defer foreign travel for at least a year. Prime Minister Modi also called on families to reduce edible oil consumption and on farmers to cut chemical fertilizer usage by 50%. Prime Minister Modi reasoned that India spends massive foreign currency on oil imports, fertilizers and gold purchases. He appealed that patriotism is about responsible living during difficult times. He said at the same time that the government is bearing all the pressure of the war and not letting people bear the brunt. The remarks have triggered a sharp political backlash. The Congress has accused the Prime Minister of being clueless on energy security and pushing citizens into inconvenience instead of building strong contingency plans. Alleging lack of planning by the government, the Congress has demanded stronger fuel reserves to tackle any fallout from the West Asia crisis.
8: जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है. साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं. अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है. भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए
15: लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है।
0: That's all we have for you in this bulletin. Time for a short break now. More news updates continue on the other side.
16: You are watching India Today.
17: Each year, KellyBlueBook.com ranks vehicles on the road for predicted future resale value. And for 2026, Toyota dominates the top of the list. 4Runner ranks number 3, the Tundra is number 2, and the Tacoma is number 1 overall, again. The fact is, Toyota works hard on both ends of ownership with special low APR financing rates available on Tacoma and Tundra right now at your local Toyota dealer. But also because you're getting trucks that are built to lead in affordability tomorrow. 4Runner, Tundra, and Tacoma are all expected to vastly outperform the average vehicle in resale value after 5 years of ownership, according to KBB, which can mean thousands more in your pocket when it's time to sell or trade in. That kind of affordability is hard to find anywhere else. So stop by your local Toyota dealer or visit Toyota.com and start shopping today. Projected resale value information is specific to the 2026 model year. For more information, visit KellyBlueBooksKBB.com. Toyota, let's go places.
18: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
19: It's your boy,
18: just
19: Jay-Z.
18: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.